0: You are tuned to Radio Sai Global Harmony, bringing you 24 hours a day the love and message of Bhagwan Sri Sathya Sai Baba.
1: We now bring you a recital from the Sikh scripture, the Guru Granth Sahib.
2: Salok Mahalla Tija ब्रह्म बिंद तिसदा ब्रह्मत्र है एक शब्द लिवलाए नव निधि अठारह सिद्धि पिछे लगिया फिर है जो हर हृदय सदा वसाए बिन सतगुर नाम ना पाई है बुझो कर विचार नानक पूरा भाग सतगुर मिले सुख पाए जुग चार महला तीजा क्या गबरू क्या बिरद है मनमुख तृष्णा भुख न जाए गुरमुख शब्द रतिया शीतल होए आप गवाए अंदर तृप्त सतोखिया फिर भुख न लगे आए नानक जे गुरमुख करे सो प्रवान है जो नाम रहे लिवलाए पौड़ी हाँ बलिहारी तिन कौ जो गुरमुख सिखा जो हर नाम ते आए दे तिन दर्शन पिखा सुन कीर्तन हर गुण रवा हर जस मन लिखा हर नाम सलाही रंग स्यों सब किले विख क्रिखा तन तन सुहावा सो शरीर थान है जिथे मेरा गुर धरे विखा श्लोक महला तीजा गुरबिन ज्ञान ना होवई ना सुख वसै मन आए नानक नामे हुणे मन मुखी जसन जन्म गवाए महला तीजा सिद्ध साधक नामै नू सब खोज दे थक रहे लिवलाए बिन सतगुर कने ना पायो गुरमुख मिलाए मिलाए बिन नामै पहनण खान सब बाद है तिग सिद्धि तिग करमात सा सिद्ध सा करमात है अचिंत करे जिसदात नानक गुरमुख हर नाम मन वसै एहा सिद्ध एहा करमात पौड़ी हम ढाडी हर प्रभ खसम के नित गावै हर गुण शंता हर कीर्तन करहै हर जस सुनै तस्कवला कंता हर दाता सब जगत पिखारिया मंगत जन जनता हर देवो दान दयाल होए विच पाथर क्रिम जनता जन नानक नाम ते आया गुरमुख धनवंता श्लोक महला तीजा पढ़ना गुणना संसार की कार है अंदर तृष्णा विकार हम मैं विच सब पढ़ थके दूजे पाए खुआर सो पढ़िया सो पंडित बीना गुरशब्द करे विचार अंदर खोजे तत लह पाए मुख द्वार गुण दान हर पाया सहज करे विचार तन व्यापारी नानका जिस गुरमुख नामे आधार महला तीजा विण मन मारे कोई ना सिजई वेखो को लिवलाए पेख तारी तीर्थी भव थके ना एहो मन मारे आ जाए गुरमुख एहो मन जीवत मरै सच रह लिवलाए नानक इस मन की मल ए उतरै हमै शब्द जलाए पौड़ी हर हर संत मिलो मेरे भाई हर नाम दृढ़ाओ एक किनका हर हर सिंगार बनावो हर जन हर कापड़ पैरो खिमका ऐसा सिंगार मेरे प्रभाव है हर लागे प्यारा प्रेम का हर हर नाम बोलो दिन राती सब किले विखो काटैक पलका हर हर दयाल होवै जिस उपर सो गुरमुख हर जप जिनका श्लोक महला तीजा जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला हुआ स्याहो खनली तोती उजली ना होवई जे सो तोवण पाहो गुर प्रसादी जीवत मरै उल्टी होवै मत बदलाहो नानक मैल न लगई ना फिर जोनी पाहो महला तीजा ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਕਲਕਾਲੀ ਕਾਂਡੀ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਏ ਜੁਗ ਮਾਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਕੀਰਤ ਫਲ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਨ ਕਉ ਹਰ ਲਿਖ ਪਾਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਅੰਦਨ ਭਗਤ ਹਰ ਉਚਰੈ ਹਰ ਭਗਤੀ ਮਾਏ ਸਮਾਹੇ ਪੌੜੀ ਹਰ ਹਰ ਮੇਲ ਸਾਧ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਮੁਖ ਬੋਲੀ ਹਰ ਹਰ ਭਲੀ ਬਾਣ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਹਰ ਨਿਤ ਚਵਾਂ ਗੁਰਮਤੀ ਹਰ ਰੰਗ ਸਦਾ ਮਾਣ ਹਰ ਜਪ ਜਪ ਔਖਦ ਖਾਧਿਆ ਸਭ ਰੋਗ ਵਾਤੇ ਦੁਖਾ ਕਹਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਸੇ ਹਰ ਜਨ ਪੂਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਰਿਆ ਰਾਧ ਤੇ ਤਰ ਚੁੱਕੀ ਜਮਕੀ ਜਗਤ ਕਾਣ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਅਰੇ ਜਨ ਉਥਾਰੈ ਦੱਬਿਓ ਸੁੱਤਿਆਂ ਗਈ ਮੁਹਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਨਾ ਜਾਗਿਓ ਅੰਤਰ ਨਾ ਉਪਜਿਓ ਚਾਓ ਸਰੀਰ ਜਲੋ ਗੁਣ ਬਾਹਰਾ ਜੋ ਗੁਰ ਕਾਰ ਨਾ ਕਮਾਏ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਡਿੱਠ ਮੈਂ ਹਮੈ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਸਰਨ ਆਈ ਉਬਰੇ ਸਚਮਨ ਸਭ ਧਿਆਏ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਈ ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਨਾਰ ਪਿਰਕੈ ਪਾਣੈ ਸਦਾ ਚੱਲੈ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਸਿੰਗਾਰ ਸੇ ਸੁਹਾਵੀ ਸਦਾ ਪਿਰ ਰਾਵੈ ਹਰ ਵਰ ਪਾਇਆ ਨਾਰ ਨਾ ਹਰ ਮਰੈ ਨਾ ਕਦੇ ਦੁਖ ਲਾਗੈ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਰ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਮੇ ਲਈ ਗੁਰ ਕੈ ਹਿਤ ਪਿਆਰ ਪੌੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਓ ਸਰੀਰ ਜਲੋ ਗੁਣ ਬਾਹਰਾ ਜੋ ਗੁਰ ਕਾਰ ਨਾ ਕਮਾਏ ਜਗਤ ਜਲੰਧਰ।